टापू में फंसा तो अंधार हो गया। इस अंधार को मेटने के लिए गुरु नानक अवतार हो गया। जिसने किया सिद्ध

पेट भर के रज के खाइया अखां दियां खखड़ियां वेख के निहाल होईयां। गुरु नानक दी नदर हो गई अख दी खखड़ी ते। अंब ते अनार मर्दाना तोड़ तोड़ खाऊंगा, ऐसे अमृत फलां दा स्वाद लै रहा है।

नानक उच्चारण करो श्री रज के खखड़िया खा लिया ते पले भी बन लिया ते अगले दिन जदों उना खखड़िया नू खान लगा ता ओ ता जहर सन मर्दाना बेहोश होके डिग

0: तेज कीता ते तेल जिले उबलन लगा ना ते मर्दाने नू चुक के कड़ाई विच सिटन ही लगा सी के धन गुरु नानक पातशाह इधर कहन लगे बालिया आ मर्दाना फिर पौजल विच फस गया महाराज ये तुहाडे आखे भी तो नहीं ना लगदा बचन भी तो नहीं मनदा ना कहन लगे भाई नाल आए दी लज होंदी है नाले सानू एदे नाल बड़े काम हन उचारण करो श्री
1: वाहिगुरु
0: धन गुरु नानक पातशाह जी ने कृपा करके अंतर दृष्टि नाल उथे पहुंच गए ते जां मर्दाने नू तेल विच सुटन लगा ता तेल ठंडा शीत वर्गा हो गया हैरान हो गया कौड़ा राखिश भाई अग बल दी है लाटा भी निकल रही हन पर इना विच गरमाई किधर गई है तेल नू हाथ लाया ता ठंडा बर्फ होया होया है ते मुड़ के वेखदा है ता फिर धन गुरु नानक पातशाह दे सोने दीदार हो रहे हैं दीदार करदिया ही दर्शन करदिया ही अंता करण शुद्ध हो गया वो पिछला समा याद आ गया जदों शराप होया सी याद आ गया कि मैं राजा जनक जी दे पास रसोईया सा ब्राह्मण सा रसोई तैयार करदा सा पर महापुरखां दा शपत रिखियां दा भोजन सी ते जदों भोजन बन गया ता मेरा मन ललचा गया मैनू भुख ने सताया बड़ा ते मैं उस भोजन नू जूठा कर देता खा लिया जदों ओ भोजन खा के जूठा कर देता ता सपत ऋषि जदों छकन लगे ता कहन लगे भाई आज इस भोजन विच किसे ने झूठ वरताई है पवित्रता नहीं नजर आ रही जां पुछिया ता ए चट मन गया महाराज मैनू बड़ी भूख लगी सी मैं इसलिए अवज्ञा कीती ते राजा जनक ने शराप दिता सी जाओ ए राक्षा महापुरखां दा भोजन जूठा कर दिता ई ते चरना ते डिग पिया महाराज तुहाडा वचन तां कदे खाली नहीं जा सकदा पर हुण मैनू तारोगे कदों आख्या तू निम्रता दे नाल बेनती कीती है नाले तू हर महापुरख दी संतां महापुरखां दी सेवा करदा रहें रसोई दी सेवा करदा रहें जहां तैनू आप निरंकार आप नारायण कलाधार गुरु नानक सच्चे पातशाह आउणगे कलयुग दे विच उना दे हथी तेरा उधार होवेगा पर आ शीशा नाल रखी अपने इस विचों अपना मुख वेख लिया करी जदों तैनू इदे विचों मनुखां वाला मुख नजर आवे ना समझ लई के अज तेरे उधार होण दा तेरी कल्याण होण दा दिन है उचारण करो श्री बड़िया बड़िया नू खांदा रहा पर अज जदों गुरु नानक दा दीदार होया ते वेखदा शीशे विचों अपना चेहरा तां देवतियां वर्गा चेहरा नजर आया ओ सारी घटना जो सी ओ फिल्म वांगू अखां को लंघ गई ते नेत्रां तो जल नहीं रुकदा चरना ते डिग पिया ओ मेरा दे साईं बख्शिशां दे सागर।

हुन कृपा करो, मेर करो, दया दृष्टि करो, मैं कोई तुहाडी सेवा करा। ते जंगल विच जाके सोने सोने फल ले आया, धन गुरु नानक पातशाह जी दे अगे लिया रखे। धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपना मेहर दा हाथ जदों कवे राखश

ना पीजे बार बैठे हैं सुन, ना पीजे रूपी माली रंग, ना पीजे तीर्थ पविए नंग, ना पीजे पेड़ मरे पिड़ सूर, कोई बड़ा सुरमा होए अपने आप नू खत्म कर देवे रण विच, रब नहीं पीजदा। ना पीजे केते होवे तूड़, कोई अपने आप नू तूड़ भी बना ले, पर आखिर विच गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज सारंग दी वार विच कहंदे हन, लेखा लिखिए मन के पाए, जे तेरा मन ही नहीं होया, जे मन विच दुई है तो फिर की कीता। गुरु पिज जांदा है, लेखा लिखिए मन के पाए, नानक पीजे खाचे नाए। इसलिए भाई अपने मन नू गुरु दे चरणा विच जदों भी लियाओ, सब कुछ बाहर छड़ के आओ और आके की कहो, मेरा मुझ में किछ नहीं। गुरु नानक दे बख्शणिया कोई टाइम नहीं जे लगना, जेड़ा आप छोड़ देन थी, जेड़ा अपना आप छड़ दवे, अपनी हंकार कमांड छड़ के आखे की आखे, तुसी भी आखो कीर्तन दी समाप्ति है।

अपनी लज्जा बचाउन वास्ते प्रभु नु याद कीता, एक मन एक चित होके त्याया उसनु। ता फिर जो परमेश्वर का नाम जपदे हन उना दी लज्जा वाहेगुरू आप रखदा है। साथ संगत बोलो श्री। तीसरे प्रमाण विच भाई साहब कहते हैं, ओ गरीब ब्राह्मण सुदामा जो मित्र सी भगवान श्री कृष्ण जी का, जदों थोड़े जिहे चावल लैके द्वारकापुरी पहुंचिया तां

उतरे बड़े प्रसन्न हुए। भाई सहदे दा प्यार वेख के हिरदे नाल लाया, आख्या भाई दया सिंह देश नूं मोरा इहदी गरीबी कट दे। भाई सहदे ने हाथ जोड़ के आख्या गरीब निवाज मैनू धन नहीं चाहिदा,

दाता एक है, दाता अनेक है। दाता और दाता विच बहुता फर्क नहीं। दद्दे नू कन्ना तत्ते नू कन्ना दाता, दद्दे नू कन्ना ते तत्ते नू कन्ना उत्ते टिप्पी पै जाए बन जांदा दाता। हुण गल सी दातार नाल जुड़ती, जुड़ गए दाता दे नाल। साहब कहिंदे दात हर तेनू मिलेगी, पर दातार नू याद करके। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस भावे तिस दई, क्योंकि सब दाता उस मालिक दे हाथ विच ने, जो भावे दे देवे। भाई साहब जी दा एक बचन बड़ा कीमती है, आपदी झोली पावा, क्योंकि सतगुर बाणी विच कहिंदे ने सब दाता ही मालिक हाथ हन। जी प्राण तन तन दिए दीने रस भोग। हुण दातां दा जिक्र है, केड़ी केड़ी दात।

अंदर कौतक वरता रहे। ब्यौड़ी च भाई पुराणा जी बैठे दर्शन करन चित कीता, उठे सुलाखां दे परले पासे निगाह गई, सारा दिन बगदी रही अग दी रोशनी विच वेखे कुरला उठे, साहिबां दे शरीर ते पए हुए छाले सिख कोलों प्यार विच बर्दाश्त नहीं होया, उन्हां सुलाखां नूं सिखां नूं फड़िया जोर दी झटका मारिया, साहिबां ने नेत्र खोले मुस्कुरा के वेखिया। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह गुरमत सिखाउण वाले तू ही मुस्कुरा सकना, गुरमत तो बारा केड़ा मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा के तकिया, भाई पराणा की हो गया, पातशाह मैथों नहीं जरिया जांदा। ते साहिब कहंदे ने वापर रही ने मेरे शरीर ते जरिया तैथों नहीं जांदा। कारण करता जो करे सिर धर मन करे शुकराना, भाई गुरदास जी भाई पराणा मालक दी रचना है, जो कर रहे है मेरे शरीर ते वापर रही है ते मैं सह रहा, तेरे को नहीं सह रहा, तेरे शरीर ते आ गई ते की करेगा। पातशाह मैनू तुसी आग्या दियो मैं तबाह कर दिया सारा कुछ, मैं फना कर दिया। साहब हस पे कहन लगे भाई पुराणा जितन फना करना होगा जिन्हें रचिया आपे कर रहे, तेनू फना करन दा फिक्र कित्थों पै गया, तू फना करन दियां ताकतां कित्थों आ गई तेरे विच। कहिंदा पातशाह तेरे चरणा विचों, ते साहब हस के कहंदे ने भाई पुराणा जे मेरे चरणा चो तबाह करन दियां ताकतां तेरे कोल आईयां ने ते फिर मैं ही नहीं तबाह कर सकदा, मैं जे तोड़ना फोड़ना चाहवा मैं नहीं कर सकता। नहीं भाई पुराणा, आपां कुछ करता पुरख की रचना विच कुछ बना सकीए कुछ उसार सकीए ते गल वखरी है, तबाहियां दी गल आपां नहीं सोचनी, आपां तां उसारियां दी गल सोचनी। मन नूं टिकाणे रख, हौसले विच रहो, उहदी रजा विच रहो। साहब उठे अपने आसन तो, उठे ते आके मोढे ते हथ रख दिता, सिखां विचों पार करके प्यारा जिहा हथ भाई पुराणे दे मोढे ते रखिया। ओ जिहड़ी अंदर जप तप दी शक्ति उछाले मारन लग पई सी सारी दबा दित्ती, ठंड वरता दित्ती। आ गए बाहरों पैरुए, उन्होंने आके भाई जी नूं बड़ा कुटिया बड़ा मारिया, पर मालिक दी बख्शिश कीती होई, धन गुरु अर्जन साहब दी बख्शिश कीती सहनशीलता सदका, फिर भाई पुराणे ने हाए नहीं कीती, सी नहीं उचारी, वाहिगुरू वाहिगुरू जपदिया होया बेसुरती तक तां पहुंच गए, लेकिन हाए नहीं आखी क्योंकि रजा च रहना आ गया। रजा च रहना आ जावे ना ते फिर हाए नहीं मुंहों निकलदी, शुक्र मुंहों निकलदा है।

परलोक विखे ऊंच पद पावई। छाड़ गुरुदेव आन देव को सेवक होए, निफल जन्म कपूत होए हसावे। लोकां दी सेवा करदा, संतां दी सेवा करदा, देव देवतियां नू मंदा होया मनुख उच्चे ते सुच्चे गुरु ग्रंथ साहिब जी दे चरणां विच पुज गया। पर की वेख्या, जेड़ा सीस गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अर्पण हो गया, कोई थोड़ी जी दुख सुख आ गया ते फिर थां थां ते भटकन लग पिया। कदी किसे संत कोल, कदी किसे कोल, कदी किसे देवी कोल, कदी किसे देवते कोल, ते फिर लोग मजाकां करदे ने, आ देखो गुरु का सिख किथे किथे भटकदा फिरदा है। आ थोड़े दिन ही होए है, मैं एक प्रेमी गुरसिख नू पुछया की हाल चाल है, कहिंदा कम तुर नहीं रहा, बड़ा परेशान हां। कहिंदा एक चिट्ठी आई है, ए भेजी है साईं बाबा वालिआं ने, आख्या एदा जाप करो तुहाडे मन नू भी शांति मिलेगी, ते नौ निधियां अठारह सिद्धियां आउणगियां। ते मैं क्या भोले मनुख की करदे फिर, कहिंदा जिथों नौ निधि मिले असी ओदा ही जाप करना है ना। एक बारी प्यार नाल बोलिए ते नाल लिखिया सी एदियां 500 कापियां छाप के फिर होर ना पासे वंड। नबज वेख लैंदे ने ए सुहागण किवें अपने मालक नालों टुटे ते इनू पतित करिए। ते थां थां ते ऐसियां दुकानां हन, गुरसिख नू बड़ा सावधान होना पैंदा, जिवें पति पिता स्त्री सावधान होंदी है। मैं क्या गुरमुखा, स्त्री सौरे नू भी मत्था टेकदी है, जेठ देवर दा भी ध्यान रखदी है, ओदा भी सत्कार करदी है, किसे संत नू दुरकारना नहीं। सत्कार अदब हर धर्म दा करना है, पर जो स्त्री अपना मन ते तन अपने मालक नू देंदी है, वो किसे दूजे नू नहीं दे सकदी। इसे तरह अदब सारिआं दा कर, पर अपनी जड़ नू ना भुल, नहीं तां मजाक दा कारण बन जाएगा। तू अज साईं बाबे नू मनेगा, कल तेरे बच्चे थोड़ा बहुत ए भी सिखी तो पतित हो जाणगे ते मुनकर हो जाणगे। ना सिख ना हिंदू ना गोरे कुछ भी नहीं रहणगे, ते गुरु की साध संगत। गुरु रामदास पातशाह कहंदे ने, ए गुरु आप ही चाहे ता पल्ला पकड़ाए, नहीं तां असी सिख तां छड़ जांदे आं गुरु। बाबा फरीद जी भी कहंदे ने,

भाई निर्मल सिंह जी नागपुर वाले, सतगुरु महाराज कृपा करन, बख्शिश करन, आप संगतां दा ये नवा साल खुशियां खेड़ियां विच इसे तरह ही गुरु चरणां विच बतीत होवे।